मानवता में यकीन रखने वाले बलिदानी महापुरुषों ने संसार में चारों तरफ फैली नफरत की आंधी को हटाकर मानवता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। संसार बटा हुआ है, यह बिखराव में है, इसे एकजुट और जागरूक करके मानव एकता कायम करने वाले संतों भक्तों ने महान बलिदान दिए हैं। उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए ही मानव एकता दिवस का आयोजन किया जाता है।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। प्रस्तुत है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 6। आज के हमारे आमंत्रित मेहमान है श्रीमती कविता अग्रवाल और आज का विषय रहेगा परिवार और समाज। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का।
2: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी और आप सुन रहे हैं घर परिवार का एक नया अंक। आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जो न केवल अपने परिवार की आधारशिला है बल्कि समाज के प्रति भी गहरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी रखती है। इन्होंने अपने जीवन में परिवार और समाज के बीच संतुलन को समझने और उसे साकार करने का जो प्रयास किया है वो प्रेरणादायक है। आइए स्वागत करते हैं कविता अग्रवाल जी का, जो आज हमें परिवार और समाज के विषय पर अपने विचारों से समृद्ध करेंगी।
3: किरणी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका प्रदान करा कि मैं अपने विचार, परिवार और समाज के प्रति मेरे जो भी विचार हैं वो मैं अपने श्रोताओं से साझा कर सकूं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने का। मेरा पहला प्रश्न आपसे है, हम अक्सर सुनते हैं कि परिवार और समाज एक दूसरे के पूरक है, लेकिन हर किसी के पास इसकी अपनी परिभाषा होती है। मैं जानना चाहूंगी कि आपके दृष्टिकोण से परिवार और समाज का क्या अर्थ है।
3: देखिए, जिन लोगों के बीच हम सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां हमें जजमेंट का डर नहीं होता, हम उन्मुक्त होकर अपने विचार रख सकते हैं, अपने डिमांड्स रख सकते हैं, जहां पर हम फिजिकली और इमोशनली सुरक्षित महसूस करते हैं, जिन लोगों पर हम अपना हक जता सकते हैं और जहां हर व्यक्ति एक दूसरे की फिक्र करता है और एक दूसरे की जिम्मेदारी लेता है, उसे हम परिवार कह सकते हैं। लेकिन जब हम समाज की बात करते हैं तो जैसे ही हम अपने घर परिवार से बाहर कदम रखते हैं तो जो लोग हमें मिलते हैं वो हमारा समाज है, जिन्हें हम जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, परंतु उनके प्रति हमारी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है जिसे हमें निभाना ही निभाना है। निभाना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई हमारी स्ट्रिक्ट जिम्मेदारी नहीं है कि हमें उसको निभाना है। उसे हम समाज कह सकते हैं। सब परिवार हैं जो, वो मिलकर एक समाज बनाते हैं और सब समाज मिलकर देश बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं परिवार सबसे छोटी इकाई है और समाज का ही हिस्सा है। हम यह भी कह सकते हैं कि समाज वह जन समूह है जिन्हें हम निजी तौर पर नहीं जानते, ना ही वो और ना ही हम एक दूसरे के दुख सुख के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन फिर भी हम आपस में बंधे हुए हैं एक मजबूत डोर से।
2: बहुत सही कहा आपने, बहुत ही गहराई से समझाया आपने। ये सही है कि परिवार और समाज एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं। आपका दृष्टिकोण वाकई सोचने पर मजबूर करता है। परिवार और समाज के इस जुड़ाव को हम अपने जीवन में कैसे महसूस कर सकते हैं, ये आपने बहुत खूबसूरती से समझाया। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है, परिवार और समाज को हमेशा एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना गया है, आपकी नज़र में इन दोनों के बीच का संबंध किस तरह का है? क्या ये रिश्ता परस्पर सहयोग पर आधारित है या इनमें से कोई एक दूसरे पर अधिक निर्भर करता है?
3: देखिए किरणी जी, ये संबंध जो है ना, ये बहुत ही गहरा संबंध है। हम हर वक्त अपने घर पर नहीं रह सकते। जैसे ही हम अपने परिवार से बाहर निकलते हैं, हम अपने आप को समाज में पाते हैं, या फिर यूं कहिए हम ही वो समाज हैं। हम उसका एक अभिन्न अंग हैं, हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। और ये हर एक व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है कि उन्हें कैसा समाज चाहिए। जो जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमें बनना पड़ेगा। अगर हम फूल बांटेंगे तो बदले में फूल ना भी मिले, कम से कम हमारे हाथ तो महकेंगे ना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कई परिवार मिलकर समाज बनाते हैं और एक बड़ा परिवार बन जाता है, तो यह हम सबका उत्तरदायित्व है। अपने परिवार की तरह सबसे निस्वार्थ प्रेम करें, सबके साथ सहज रहें और बिना किसी को जज करें उसका साथ दें, उसको सपोर्ट करें। तभी तो हम, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं और हमारे भारतीय संस्कृति की बहुत ही एक मशहूर लाइन है वसुदेव कुटुम्बकम, तभी तो हम इस नारे को सच कर पाएंगे कि जो हमारा सारा विश्व है वो ही हमारा परिवार है। संबंध तभी बनता है जब दोनों तरफ से सहभागिता हो। अगर हम समाज को अपना परिवार समझेंगे तभी उसके लिए चिंतित होंगे और तभी उसके लिए हम कुछ कर पाएंगे, सच्चे मन से कुछ कर पाएंगे। बाकी संबंधों की तरह यह भी गिव एंड टेक का रिश्ता है। जैसा दोगे वैसा पाओगे। जैसा समाज हमें चाहिए तो हमें अपने आप को उस समाज में फिट करने के लिए वैसे ही एक्शंस करने पड़ेंगे, वैसी ही विचारधारा रखनी पड़ेगी, तभी हम एक मजबूत और एक फ्रूटफुल समाज बना पाएंगे।
2: सही कहा आपने, सचमुच परिवार और समाज के बीच ये तालमेल बेहद अहम है। आपकी बात से ये साफ होता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारी बातचीत के दौरान हमने परिवार और समाज के बारे में कुछ सीखा, लेकिन अब थोड़ा म्यूजिक का मजा लेते हैं। कविता जी, हम जानते हैं कि हर किसी का कोई ना कोई पसंदीदा गाना होता है जो उनके दिल के बहुत करीब होता है, तो आपके पसंद का कौन सा गाना हम श्रोताओं को सुनाएंगे अब?
3: देखिए, जो पुराने गाने हैं वो सारे ही मेरे दिल के बहुत करीब हैं, परंतु एक गाना है जो मुझे बेहद पसंद है। क्या मैं उसे गुनगुना सकती हूँ?
2: हाँ जी, जरूर।
3: तो वो इस तरीके से है, एक

0: प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो अगला प्रश्न मेरा है वो है, आज के समय में जब व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, परिवार की जिम्मेदारियां और सामाजिक दायित्व तीनों के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती बनता जा रहा है, आपकी राय में परिवार और समाज के बीच ऐसा संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है जो न केवल व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करे बल्कि सामूहिक हितों को भी बनाए रखे।
1: देखिए, आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है। संतुलन शब्द जो है ना, वो अपने आप में बहुत ही नाजुक है। जब हमें संतुलन बनाना पड़े, चाहे वो रिश्तों में हो, खाने में हो, बातचीत में हो या समाज में हो, तो बहुत ही नाजुक कार्य है, क्योंकि जरा सा भी बैलेंस इधर उधर हुआ तो सब बिगड़ जाता है। अब क्योंकि परिवार और समाज दोनों का दायित्व हमारा है, तो हमें दोनों को ही समय देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर हम परिवार को ही सामाजिक कार्यों में सहभागिता दे दें तो कभी भी संतुलन नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी दूसरे से एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, और व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। ऐसे में व्यक्ति पहले अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, बाद में वो किसी और से एक उम्मीद करेगा। इसे हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए परिवार का कोई सदस्य किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा बनना चाहता है। अब वो अपने कार्यालय से या अपने व्यवसाय से तो समय नहीं निकाल सकता, उसके समय के साथ वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता, तो अब उसको जो समाज को समय देना है वो अपने पारिवारिक समय में से ही वो समय निकालेगा, जो कि परिवार के लिए एक खिज का, एक चिड़ का कारण बन सकता है। उसकी समाज के प्रति एक नकारात्मकता भी आ सकती है कि हमारे समय में से वो समाज को समय दे रहा है, और ऐसा होना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या कर सकता है, समझदारी से काम लेते हुए वो अपने सारे परिवार के सदस्यों को उस कार्य का हिस्सा बना सकता है। उससे होगा क्या कि सारा परिवार एक साथ काम करेगा तो वो एक फैमिली टाइम स्पेंड कर पाएंगे, और जो हमारा लक्ष्य था हम उसको भी पूर्ण कर पाएंगे
0: जी।
1: लेकिन इसमें उस व्यक्ति को बहुत ही पेशेंस रखनी पड़ेगी और बहुत ही प्रेम से ये कार्य करवाना पड़ेगा, क्योंकि घर के हर सदस्य की सोच और विचारधारा अलग होती है। उसको हमें अगर अपनी विचारधारा में लाना है तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, तभी हम अभी इस कार्य को अपना पूरा कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर हम सबकी साझेदारी होगी उस कार्य को करने में, तो किसी को हमसे शिकायत भी नहीं रहेगी, हम साथ में समय भी व्यतीत कर पाएंगे, और जो हमारा लक्ष्य है समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का, हम वो भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।
0: ये सुझाव बहुत प्रैक्टिकल और प्रेरक है। संतुलन बनाए रखना शायद आसान नहीं, लेकिन छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। संतुलन का ये विचार हमारे श्रोताओं के लिए बेहद उपयोगी रहेगा। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो मेरा अगला प्रश्न है वो है, आज के व्यस्त जीवन शैली में परिवार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां अक्सर पीछे छूट जाती हैं। आपकी दृष्टि में क्या हम अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं जो न केवल हमारे परिवार को मजबूत बनाए बल्कि समाज के प्रति भी हमारा योगदान को बढ़ाए?
1: निश्चित तौर पर जब परिवार की बात आती है ना, तो हम किसी भी बदलाव के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो कोई दैनिक बदलाव हो, चाहे हमें अपनी कोई डेली रूटीन में कोई चेंज लाना पड़े, तो हम परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन जब समाज की बारी आती है तो हम कुछ कुछ एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं कि मेरे पास तो समय का अभाव है, या फिर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या कुछ भी ABCD, हम कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं जब समाज की बात आती है। और इसकी वजह यह है कि हम समाज को ना अभी तक अपना नहीं बना पाए हैं। जब तक हम उसको अपना परिवार नहीं समझेंगे, तब तक हम उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा पाएंगे, तब तक हम उसकी किसी भी काम को करने के लिए वो डेडिकेशन हमारे अंदर आएगी ही नहीं, हम अपना योगदान उस तरीके से नहीं दे पाएंगे जैसा हम अपने परिवार के लिए देना चाहते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा एक सेफ समाज बने। आज के टाइम में हम अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में क्यों डरते हैं? सबसे बड़ा कारण क्या है? समाज, कि समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं। हमें यही डर लगता है कि हमारे बच्चे बाहर जाएंगे तो किसी गलत संगत में ना पड़ जाएं, गलत लोगों की कंपनी में आके गलत आदतें ना सीख जाएं। आप सोचिए, अगर एक सुरक्षित और प्रेम भरा समाज होगा तो क्या हम बच्चों को बाहर भेजने से डरेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम निश्चिंत होकर अपने बच्चों को बाहर भेज सकते हैं। लेकिन ये समाज हम लोगों से बना है, ये अपने आप तो अच्छा नहीं बनेगा,
0: इसलिए हमें पहले अपने आप में बदलाव लाना चाहिए।
1: जैसा हम चाहते हैं कि समाज हो, हमें वैसे ही एक्शंस करने पड़ेंगे। जैसे बच्चों के लिए कहा जाता है ना कि बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, बजाय कि वो जो सुनते हैं वो करेंगे। तो यही सबके लिए है। अगर हम चाहते हैं समाज में प्रेम फैले, सब मिलजुल के रहें, तो ये हमें अपने परिवार से शुरू करना पड़ेगा। परिवार में हम करेंगे, बच्चे देखेंगे, सीखेंगे, घर के बाकी सदस्य भी यही सीखेंगे, और फिर जब वो बाहर जाएंगे तब तक वो इनकी आदत में शुमार हो चुका होगा। तो फिर वो सभी के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा परिवार में करते हैं, और निसंदेह फिर हमारा समाज एक शांतिपूर्ण, एक प्रेम भरा समाज बन जाएगा, जो हमें बिल्कुल अपने परिवार की तरह लगेगा। चाहे हम घर के अंदर हैं, चाहे घर के बाहर हैं, हमें एक जैसा फील होगा। हमें ये नहीं लगेगा कि हमें कुछ चीजों को जबरदस्ती फॉलो करना है, कुछ रूल्स को फॉलो करना है, क्योंकि वो हम सबके बनाए हुए हैं और हम सबके लिए हैं। तो वो एक इक्वालिटी आ जाएगी हर चीज के अंदर। तो ये बहुत ही एक, जैसे सत्ययुग हम जिसको कहें, वो वाला माहौल हो जाएगा। ये हमारे ही हाथ में है कि हमें कैसा समाज बनाना है,
0: क्योंकि परिवारों का समूह ही तो समाज है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, परिवारों का समूह ही समाज है, और उस पर समाज को बनाने वाले हम लोग ही हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें खुद को और अपने आने वाली जनरेशन को कैसा समाज देना है, इस देश को कैसे नागरिक देने हैं। तो हमें उसी जिम्मेदारी के साथ काम करना है इस समाज को एक अच्छा बनाने के लिए। तो उसके लिए हम छोटे छोटे दैनिक परिवर्तन कर सकते हैं, कि जैसे अगर हमें घर में या घर से बाहर सफाई रखने की आदत नहीं है तो हम शुरुआत कर सकते हैं उसकी। अगर हमें क्रोध आता है तो हम उस क्रोध पे थोड़ा काबू पा सकते हैं, घर में भी और घर के बाहर भी। बिल्कुल इतने माइनर चेंजेस हैं ये, जिनका हमें पता भी नहीं चलेगा। ना हमें इनके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं, ना इनके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम देना है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे वो ऐसा असर दिखाएगा, एक ऐसा समाज बन जाएगा जिसकी हम कल्पना तो जरूर करते हैं लेकिन अभी तक हमने उसको देखा नहीं है। वो हमारी कल्पना सच में बदल जाएगी अगर हम ये छोटे छोटे बदलाव अपने जीवन में शामिल कर लें, और औरों को भी प्रेरित करें कि वो भी यही सब करें।
0: हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। छोटे बदलाव वाकई बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। हर किसी को अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। अब हम इस खूबसूरत बातचीत को थोड़ा संगीत से जोड़ते हैं। कविता जी, आपका पसंदीदा गाने के साथ कुछ और पल हम एक साथ बिताएं, आइए सुनते हैं ये गाना।

0: अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों की जो हमारे जीवन को सरल और स्वस्थ बना सकते हैं। कविता जी, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पुराने घरेलू नुस्खे कितने प्रभावी हो सकते हैं। क्या आप हमारे साथ कोई ऐसा नुस्खा शेयर करना चाहेंगी जिसे आप खुद कभी इस्तेमाल किया हो और जो बहुत फायदेमंद साबित हुआ हो?
1: किरणी जी, अगर घरेलू नुस्खों की बात करें तो जो हमारी रसोई है ना, वो खजाना है नुस्खों का। उसमें आपको अधिकतर हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा। वो तो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग अंग्रेजी दवाइयों का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो हमें एकदम से आराम देती है। जो घरेलू नुस्खे हैं वो थोड़ा स्लो आराम देते हैं, लेकिन उनका फायदा ये है कि उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो अगर हमारी रसोई के अंदर आपको हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा। अब आजकल जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है, अक्सर हमें खांसी की शिकायत हो जाती है, तो मैं आपसे एक छोटा सा नुस्खा शेयर करूंगी जो जिसके लिए ना आपको कोई एक्स्ट्रा सामान लाने की जरूरत है, ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत है। इसके लिए हमें केवल दो चीजों की जरूरत है, एक है हल्दी और एक गुड़, जो बड़ी आसानी से हम सबकी पाकशाला में मिल जाता
0: जी।
1: है। तो आपने करना क्या है, बराबर मात्रा में हल्दी और गुड़ लेकर अच्छे से मिला लेना है और उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। गुड़ क्योंकि मीठा स्वाद होता है तो इसको बच्चे बड़े हर कोई ले सकता है। जब भी खांसी हो इस गोली को, इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर इसको मुंह में रखें और चूसते रहें, क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें हैं तो इनका कोई नुकसान भी नहीं है। तो आप इसको दिन में 3-4 बार भी ले सकते हैं। और छोटे बच्चे हैं, अगर वो नहीं लेते तो आप उनको रैपर में लपेट के टॉफी की फॉर्म में भी उनको दे सकते हैं। उससे क्या होगा, डबल फायदा होगा, उनको टॉफी का स्वाद भी मिल जाएगा और उनकी खांसी में भी आराम आ जाएगा।
0: बहुत अच्छा नुस्खा, क्योंकि हल्दी जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। ये कई बीमारियों को जैसे कैंसर तक को हल्दी ठीक करती है। कविता जी, ये नुस्खा तो बिल्कुल ही शानदार है। यहाँ हमें याद दिलाता है कि पुराने समय के इन छोटे छोटे उपायों में कितनी ताकत होती है। अब इन चमत्कारी नुस्खों के बीच एक और चमत्कारी चीज है, वो है संगीत। तो क्यों ना हम इस जानकारी पूर्ण पल को और भी खास बनाने के लिए आपके पसंदीदा गाने के साथ इसे और भी खूबसूरत बनाएं।
1: गाने तो बहुत हैं, लेकिन हम हर पल की कद्र नहीं करते। एक गाना है

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर परिवार। अब इस कार्यक्रम का अंतिम भाग, अब हम बात करेंगे एक ऐसी रेसिपी के बारे में जो न सिर्फ स्वादिष्ट हो बल्कि पौष्टिक भी हो। आपने हमें बताया कि आपको ऐसे व्यंजन पसंद है जो सेहत के लिए अच्छे हैं और साथ ही खाने में भी मजेदार है। क्या आप हमें अपनी पसंदीदा पौष्टिक और स्वादिष्ट रेसिपी के बारे में बताना चाहेंगे?
1: जरूर किरणी जी, मुझे कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक है और मैं कुछ कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं बच्चों को हेल्दी खिलाऊं। सिर्फ बच्चों को नहीं, घर के सभी सदस्यों को हेल्दी भोजन खिलाऊं जिसमें उनको पौष्टिकता मिले और बाहर से बनी चीजों से उनका जो एक अट्रैक्शन है वो कम हो जाए। मीठे की क्रेविंग अक्सर हम सबको रहती है, खाना खाने के बाद मन करता है कुछ मीठा खाएं, लेकिन आजकल क्योंकि सब कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो हमें ये डर रहता है कि हमने इतनी शुगर कंज्यूम कर ली है, अगर हम क्रीम की फॉर्म में लेते हैं तो हमने इतना मीठा खा लिया है। तो आज एक रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके गिल्ट फ्री है, आप उसको जी भर के खा सकते हैं, ना आपको एक्स्ट्रा फैट मिलेगा उससे, ना एक्स्ट्रा शुगर मिलेगी और हेल्थ बेनिफिट्स इतने हैं कि आपको रेसिपी सुन के ही समझ में आ जाएगा। रेसिपी का नाम तो बड़ा कॉमन है, वो है फ्रूट क्रीम, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल अलग हैं। अक्सर फ्रूट क्रीम हम फ्रूट्स क्रीम और उसमें मीठा कुछ भी फॉर्म में, चीनी कुछ भी डाल के हम उसको बनाते हैं, लेकिन जो हमारी रेसिपी है इसके अंदर आप फ्रूट्स लीजिएगा अपनी चॉइस के, उनको बारीक चॉप कर लीजिए। क्रीम की जगह यहाँ पर हम डालेंगे 2-3 चम्मच गाढ़ा दही। दही के अंदर ना तो फैट होता है ना कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सारे इसके जितने बेनिफिट्स हैं दही के वो हम सब जानते हैं। और साथ में वैसे तो फ्रूट्स में अपना नेचुरल तौर पे काफी मीठा होता है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि थोड़ी सी मीठे की जरूरत है तो आप इसमें 1/2 चम्मच हनी डाल सकते हैं या फिर 1/2 चम्मच शक्कर डाल सकते हैं जो चीनी के मुकाबले कम नुकसानदेह है। आप इसको खा के देखिए और यकीन मानिए कि बच्चे जल्दी से नहीं बता पाएंगे कि आपने क्रीम में नहीं बल्कि दही में बनाया है। और फ्रूट्स होने की वजह से पौष्टिक तो है ही है और इतनी फिलिंग रेसिपी है ये, अगर आप इसका एक बोल ब्रेकफास्ट में खा लें तो आई थिंक आपकी ब्रेकफास्ट की नीड को ये एकदम से कंप्लीट कर देता है। आप किसी भी टाइम इसको खा सकते हैं और अच्छा फिलिंग और टेस्टी और गिल्ट फ्री रेसिपी है ये। तो मेरी सलाह

0: लगता है। इस गाने के साथ हमें वो खास एहसास मिलेगा जो इस पल को और भी यादगार बना देगा।
1: मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ रेडियो वितस्ता का, जो अंबाला कैंट का अपना रेडियो स्टेशन है। मुझे लगता है इस रेडियो स्टेशन के जरिए अंबाला के लोगों को बहुत ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा। वो अपने विचार लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे और तो और वो अपने व्यवसाय को और अपनी और विचारधारा को लोगों तक पहुंचा पाएंगे इसके जरिए। भारत जी किरणी जी का ये बहुत बड़ा तोहफा है अंबाला कैंट को, जिसके जरिए अंबाला के लोग आपस में जुड़ जाएंगे और एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। रेडियो वितस्ता अंबाला का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कार्यक्रम के अंत में हमारा संदेश है, कभी रिश्तों में बसी होती है एक ऐसी खामोशी जो परिवार और समाज को जोड़ने की होती है एक कोशिश। जहां अपनों का साथ होता है वहां ताकत का एहसास होता है। समाज भी उस शक्ति से महकता है जब हर दिल में प्यार का एहसास होता है। रिश्तों के उस प्यारे सागर में हर व्यक्ति एक लहर है। साथ चलने से ही हम समाज को समझते हैं और संवारते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 6। आज के हमारे आमंत्रित मेहमान थे श्रीमती कविता अग्रवाल। आज का विषय था परिवार और समाज। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

जाए साथ। गई गई ओ गई गई गई नीली जिसकी साड़ी निकली बड़ी अनाड़ी रह गए छे खिलाड़ी। गई ओ गई ओ गई।

0: साथ।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं पोर्टल में नुकसान मानता हूँ, मौसम परिवर्तन का यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ ना कुछ भरपाई होगी जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

नमस्कार, एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। तो लघु कथाओं की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और हाजिर हूं आपके बीच में एक नई लघु कथा लेकर, जिसका शीर्षक है ममता माँ की। और इस लघु कथा के रचनाकार हैं सीहोर मध्य प्रदेश के श्री धर्मराज देशराज। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए सीधे ही इस ममता माँ की भावनाओं से जुड़ते हैं और प्रस्तुत करते हैं हम आज की ये लघु कथा। सेठ धनीराम अपने किराने की दुकान पर ना उधारी की कापी देख रहे थे कि किस पर कितना बकाया है। तभी एक महिला आई और बोली, सेठ जी, मुझ पर आपके कितने रुपए निकल रहे हैं। सेठ धनीराम ने अपनी कापी देखी और बोले, पूरे 500। वो बोली, अरे कुछ दिन पहले तो आपने 450 रुपए बताए थे। धनीराम बोले, भाई ब्याज भी तो लगता है ना। उसने 500 रुपए निकाल के महिला ने सेठ जी को दे दिए और बोली, सेठ जी, मजबूरी का फायदा उठाना तो कोई आपसे सीखे। ये मेरी बेटी को स्कूल से स्कॉलरशिप मिली थी। चलो, आपका रुपया तो चुकता हो गया ना। एक बोझ था, उतर गया। महिला तो चली गई, सेठ धनीराम विजयी मुस्कान लेकर बैठे रहे। दूसरे दिन वही महिला सेठ धनीराम की दुकान पर आई और बोली, सेठ जी, मैंने कल आपको आपका पूरा हिसाब चुकता किया था, आप उसमें से 100 रुपए वापस दे दो, जो आपको जल्दी चुका दूंगी। तब सेठ धनराम बोले, भाई मेरे यहां बस यही नहीं होता, रकम आने के बाद वापस नहीं दी जाती। तब महिला बोली, अच्छा मुझे 2 किलो चावल उधार दे दो, उनसे काम चला लूंगी। धनीराम ने 2 किलो चावल तोल कर दिए और महिला चली गई। कुछ देर बाद सेठ धनीराम का बेटा आया और उससे बोले, बेटा आज शनिश्चरी अमावस्या है, मैं शनि मंदिर होकर आता हूँ, तुम दुकान संभालना जब तक मैं नहीं आता। मेरे पास कुछ खुले पैसे और एक 5 का फटा नोट है, उसे ठिकाने लगाकर आता हूँ। ऐसा कहकर सेठ धनीराम दुकान से निकल गए। अब मंदिर के बाहर मांगने वालों की भीड़ देखकर जल्दी से मंदिर के अंदर दाखिल हो गए और लौटते समय जेब से खुले पैसे निकालकर जल्दी जल्दी भिखारियों को देते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी उनकी नजर उस महिला पर पड़ी जो भीख मांगने वालों की लाइन में बैठी थी। सेठ धनीराम ने पूछा, तुम यहां भीख मांग रही हो, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बोली, सेठ जी, मेरी बेटी सरकारी अस्पताल में भर्ती है, मैंने तुम्हारी दुकान से 2 किलो चावल उधार लिए थे, उन्हें दूसरी दुकान पर आधे भाव में बेचा और डॉक्टर की लिखी एक दवा की शीशी खरीदी, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो यहां भीख मांगने बैठी हूं कि शायद कुछ मिल जाए। सेठ जी, दुनिया में ईमानदारी भी कुछ चीज है, मरने के बाद सब कुछ यहीं रहना है, साथ कुछ भी नहीं जाएगा, बस यही सोचकर गलत काम नहीं करती, वरना मुझे जहां चौका बर्तन करने जाती हूं ना, वहां चाहूं कितना कुछ कर लूं किसी को पता भी ना चले, परंतु मैंने इंसानियत का दामन नहीं छोड़ा है, और हां कभी छोड़ूंगी भी नहीं। सेठ धनीराम ने जेब से कुछ पैसे निकालिए और निकालकर उसको दे दिए और वापस दुकान पर आ गए। अब उनके कानों में उस महिला की कही हुई बात गूंज रही थी कि ईमान भी कोई चीज होती है, सब रखा कर रखा रह जाएगा, कुछ भी
साथ नहीं जाएगा। उन्हें अपने आप से गलानी होने लगी। दो तीन दिन बाद सेठ धनीराम सुबह ही उस महिला के घर पहुंचे। उन्हें मालूम हुआ कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। धनीराम ने एक से पूछा कि कौन से सरकारी अस्पताल में है इनकी बेटी। तब उसे बताया कि इनकी बेटी पहले सरकारी अस्पताल में थी, किंतु सुधार न होने के कारण प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गई है। पता लगाते लगाते सेठ जी उस नर्सिंग होम तक जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सड़क पर भीख के लिए कपड़ा बिछाए वो महिला बैठी हुई रो रही थी और लोग आसपास खड़े देख रहे थे। धनीराम ने महिला से पूछा, भाई ये सब क्या है? तो महिला बोली, सेठ जी मैंने अपनी बेटी की उचित इलाज के लिए अपनी पट्टे वाली झोंपड़ी तक बेच दी, मैं बर्बाद हो गई, लेकिन मेरी बेटी बच नहीं सकी। अब नर्सिंग होम वाले अपना बकाया मांग रहे हैं, तब मेरी बेटी की लाश मुझे देंगे। बस इसलिए सड़क पर कपड़ा बिछाकर

सिर झुकाकर बड़बड़ाते हुए वहां से चल दिए कि साथ में कुछ नहीं जाता भाई, कुछ नहीं जाता भाई, कुछ नहीं जाता भाई।

0: धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: तो छु भोजान नमत अशैरिया सिफर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी हूं।
2: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। ललेश्वरी, जिन्हें ललदत्त या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत कवियत्री और शैव दर्शन की प्रमुख साधिका थी। उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमयी दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए। उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है। ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शैव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला।
3: नमस्कार, आज का जो ललवाक ललेश्वरी शिवयोगिनी द्वारा कहा गया है ये बहुत ही विचित्र है, क्योंकि इसमें अध्यात्म और विज्ञान दोनों का मिश्रण आपको दिखाई देगा। ललदत्त कहती है, गोरस प्रछोम सास लेटे यस्न क्या मना तस क्या नाम, प्रसान प्रसान थचस तलूसस केहनस निशी क्या थाम द्राव। यानी ललदत्त कहती है, गोरस प्रछोम सास लेटे हजारों बार मैंने अपने गुरु से पूछा, यस्न क्या मना तस क्या नाम, जिसे कुछ भी नहीं कहते उसका नाम क्या है। प्रसान प्रसान थचस तलूसस पूछते पूछते मैं थक और हार गई, केहनस निशी क्या था अंदरा, और अंत में कुछ नहीं मैं से ही सब कुछ निकला। ललदत्त की वो प्रभु को जानने की प्यास और उस प्रभु को चाहने में वो अपने गुरु के पीछे पड़ी हुई है। वो गुरु भी क्या रहा होगा और ललदत्त भी क्या रही होगी कि जो निरंतर बिना थके लगातार निरंतर उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। तो ललदत्त हमें ये इशारा करती है यहाँ पे कि जो नाम, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, इनमें प्रभु नहीं मिलता। नाम तो हम इंसानों ने दिए हैं परमात्मा के, कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है। ललदत्त के कहने के अनुसार नामों में कुछ नहीं रखा, और अंत में मैंने जो पाया वो पाया कि कुछ नहीं में ही वो सब कुछ है। यानी जो मैं पूछ रही थी, जिस सच्चाई की खोज मैं कर रही थी, वो सच्चाई की खोज मुझे किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में नहीं मिला,

खोज मेरी खत्म हुई जब मैं अपने में ही डूब गई, जब मैंने अपने आप को ही समाप्त किया। अपने आप को समाप्त करने का मतलब ये है कि जिन विचारों से मैं अपने आप को खड़ा करता हूँ, बनाता हूँ, वो विचार ही जब मैंने खत्म कर दिए और विचारों के पार चला गया, तो उस कुछ नहीं में से मुझे कुछ दिखाई दिया। और साइंस भी यही कहता है कि ये जितना भी मैनिफेस्टेशन है यूनिवर्स का, ये नथिंगनेस से निकला हुआ है। ये सारा एक क्वांटम फील्ड है और उसी क्वांटम फील्ड की नथिंगनेस में से ये सारी फिजिकल वर्ल्ड की मैनिफेस्टेशन होती है।

चलते चलते तुम्हारी दुआओं का असर देखेंगे और सरी रहा अपने इंतजार को महफूज रखेंगे अपने महबूब के लिए, उस महबूब के लिए जो हरदम मेरे साथ मेरे पास रहता है मेरे साए की तरह। तुम्हारे कुछ ख्वाबों ने एक मुद्दत के बाद दिल में क्यों आज आस जगाई है कि तुम्हारी सांसें तुम्हारी धड़कनें मेरे आने वाले कल का नसीब हैं। हमारे हाथ भी उठते हैं अब तुम्हारी दुआओं में, जब मेरे कारवां में तुम्हारा साया मेरे साए के हमराह इस रेतीले सफर में मील के पत्थर की तरह रह गुजर में शामिल तो होता है पर रूबरू नहीं होता।

उदासी भरे इन पीले पत्तों के मौसम में सिर्फ तुम्हारी यादें साए की तरह मेरे साथ साथ हैं, मेरे पास पास हैं। परछाइयों के इस सफर में हमारे रास्ते पथरीले हैं, पर तुम्हारे हैं उम्मीदों से भरे। तुम्हारे लिए फिर सुबह होगी और हमारे नसीब में है हिजर की ढलती शामी। इन रेतीली हवाओं का रुख क्यों नहीं कोई मोड़ लेता है, क्यों नहीं कोई मुझे अपने दामन में पनाह देता है। मेरी चाहतों को हमेशा ये कौन दर्द का लिबास पहनाता है, क्यों कोई मुझे राह रुस्वा छोड़कर यूं ही चला जाता है ये कहकर कि मैं लौट कर तुम्हारे ही पास आऊंगी जीने के लिए। ये मेरा ही कसूर था जो उदासी भरे इन पीले पत्तों के मौसम में मैंने तुम्हें चाहा है अपनी चाहतों की तरह। तुम्हारे आसमां में अपनी परवाज लिए बुलंदियों को छूने की आरजू की, तुम्हारे हाथों की लकीरों में अपना मुकद्दर तलाशना चाहा, ये सोचकर कि मेरे आंसुओं से शायद कभी भीगेगा तेरा प्यार।

कुछ तू है जो बेवजह तुम मेरी जिंदगी में आकर मेरे मासूम ख्यालों को तन्हा कर जाते हो, और मैं तुम्हें सोचता रहता हूं देर तक कि तुम मुझे अपने आंचल में जो छिपाती, तो शायद मैं खुदा से जीने की आरजू करता, गुजारिश करता, मेरे एहसास को तुम संभालते, मेरी धड़कनों में मेरे साथ शामिल हो जाते, मेरे अधूरे सफर में मेरे हम सफर बन जाते, मेरी वीरानियों को तुम आबाद करते, मेरी राहों को तुम मुनव्वर करते, अपने सितम अपनी परेशानी मुझे दे देते, मगर ये हो न सका क्योंकि तुम्हें जाना था दूर किसी और की दुनिया में, जहां शायद उजाले तुम्हारी राहों को रोशन करने के लिए मुंतजर हैं, जहां पिंजरों में कैद परिंदे तुम्हारे आने का इंतजार करते हैं अपनी आजादी के लिए, जहां ये बेजुबान पत्थर कुछ बोलने की फिराक में है, जहां ये अपनी खामोशी तोड़ने के लिए तरस रहे हैं, बेचैन हैं, मगर अब मुझे खुद को संभालने के लिए किसके हाथ उठेंगे मेरी दुआओं के लिए।

दोस्तों, फिल्मी गीतों का ये सफर आप तय कर रहे हैं अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। ये सफर जारी है। जब रिश्ते टूट गए तो फिर कल्पना क्यों करें, क्यों तुम्हारे बारे में सोचे। क्यों तुम्हारे दिए हुए तोहफे संभाल कर रखें, फिर क्यों ना हम तुम्हारे लिखे हुए खत जलाएं, तुम्हारी दी हुई निशानियां इन पानियों में बहा दें, तुम्हारे घर तक जा रहे इन रास्तों को भूल जाने की कोशिश करें। जब ये रिश्ते टूट गए तो फिर हम क्यों उजालों का इंतजार करें। क्यों न गुप अंधेरों में गुम हो जाए, तन्हा चले चले बचपन के आगोश में, मिट्टी के खिलौनों से टूटी दीवारों को सजाएं, रंग बदलती दुनिया की तस्वीरों को आखिरी बार। आखिरी बार अपने कैनवास पर उतारने की कोशिश करें। शायद इस बार मैं एक पायदार तस्वीर बनाने में सफल हो जाऊं।

यही वो जगह है जहां हम मिले थे कभी। सब कुछ अपनी जगह बरकरार है, कायम है। हाँ, ये चिनार तब बहुत छोटा था, पर अब इसकी शाखाएं आसमां से बातें करने लगी हैं। इसकी नरम नाजुक परछाई में बिछे मखमली घास पर करवटें लेने को दिल कर रहा है, क्योंकि ये जगह आज भी वैसी ही है जैसे पहले कभी हुआ करती थी, जहां सुनहरी शामों से पहले आफ्ताब का मंजर हमारी सांसों को ताजगी बख्शता रहा। ये हवाएं हमारी रूहों को अमन सुकून से नवाजती रहीं। ये पानी अमृत से कम नहीं। यहां इन परिंदों की मीठी मीठी बोली सरगम की तान छेड़ती थी, और हर कोई अपनी आवाज इनकी बोली से मिलाया करता था, ताकि यहां का माहौल संगीतमय हो। बदला अगर है कुछ तो वो है सिर्फ हमारा अतीत, हमारा बचपन, जो शायद कभी भी लौट कर नहीं आ सकता।

आज के लिए बस इतना ही। ये सफर आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।

0: जब देखो पढ़ाई पढ़ाई, थोड़े घर के काम में हाथ बटाना भी सीख ले, के करेगी इतना पढ़ के।
1: ITI में दाखिला लूंगी और फिर एक अच्छी नौकरी करके अपने परिवार के सारे सपने पूरे करूंगी।
0: इतना आसान हो गया के?
1: माँ लगता है आपको पता नहीं कि महरी हरियाणा की ITI में दाखिले शुरू हो गए हैं, जहाँ पे 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवा राज्य की 197 सरकारी और 180 प्राइवेट ITI के एक और 2 साल के कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं। इन ITIs में 93 ट्रेड्स में 80,000 से ज्यादा सीटें हैं।
2: अधिक जानकारी हेतु www.itiharyana.gov.in पर लॉगिन करें अथवा निकटतम ITI में संपर्क करें।

0: पेश है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 9। इस कार्यक्रम को पेश करेंगे आज ये किरनी, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने और निर्देशन भारत सोपोरी का।
1: आप सुन रहे हैं 90.0 FM मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। लीजिए पेश है सरगम का एक और अंक। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के गाए हुए गाने के साथ फिल्म 420 से, जिसके बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और जिसका म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने।

लीजिए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ गाना फिल्म जीने की राह से, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अब पेश है अमित कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ गाना फिल्म आखिर क्यों, जिसे लिखा है इंदिवर ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

आप सभी श्रोताओं को सुना रहे हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, जिसे संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म फर्ज से।

अब पेश है फिल्म धाक का गाना, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, जिससे संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और जिसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने।

लीजिए आप सुनते हैं इंदिवर का लिखा हुआ गाना फिल्म मल्हार से। संगीत दिया है रोशन ने और गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

अगला गाना है फिल्म छोटी सी बात से, जिसे गाया है यशोदास और आशा भोसले ने। संगीतकार है सलिल चौधरी और गीतकार है योगेश।

आइए अब सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना फिल्म यादों की बारात से, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने, जिसके संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

अगला गाना है फिल्म धर्मात्मा का, जिसे गाया है मुकेश और कंचन ने, और उसके बोल लिखे हैं इंदिवर ने, और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अब पेश है संगीतकार आरडी बर्मन का गाना, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, फिल्म है हम किसी से कम नहीं, और गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने।

आइए अब सुनते हैं शैलेंद्र सिंह और कंचन की आवाज में फिल्म रुफू चकर का गाना, जिसके संगीतकार है कल्याण जी आनंद जी, जिसके गीतकार है गुलशन बावरा।

आज के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है फिल्म आंधी से, जिसे अपने आवाजों से सजाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, और जिसके बोल लिखे हैं गुलजार ने, और संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने। इस गीत के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और कार्यक्रम में।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 9। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आरजे किडनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने और निर्देशन भारत सोपोरी का था। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: पेश है कार्यक्रम परिचर्चा। आज के मेहमान हैं कैसर सिस्टर्स, जरताज कैसर, जरनिगार कैसर और एहसास कैसर। प्रस्तुत करेंगे भरत सुपोरी।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता हमसफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सुपोरी। आज आपके लिए लाया हूं कार्यक्रम परिचर्चा। परिचर्चा में वैसे तो हम स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं मेहमान को, पर आज के इस कार्यक्रम में हम थोड़ा अम्बाला से दूर चलते हैं। आज हम चलते हैं दिल्ली, और आपको पता है कि अगर हम दिल्ली चलेंगे तो हम किसी टेलीफोन की या मोबाइल के माध्यम से जो हमारे सुनने वाले हैं उनको कनेक्ट करेंगे और उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं मिलवा देता हूँ जसवंत सिंह मल्होत्रा जी से। जसवंत सिंह मल्होत्रा जी दिल्ली में एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है फिलहार्मोनिक सिंगर्स फाउंडेशन न्यू दिल्ली, और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं जसवंत सिंह मल्होत्रा जी। सबसे बड़ी बात ये है कि कोविड के टाइम में जसवंत जी ने बहुत सारे बडिंग और अपकमिंग सिंगर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया और उसके साथ उनको एंगेज किया ताकि वो किसी परेशानी में ना रहे, अकेलेपन में ना रहे। और आइए आज हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में जसवंत सिंह मल्होत्रा जी का, जो इस समय हमसे जुड़े हैं दिल्ली से। जसवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो वितस्ता के इस स्टूडियो में।
2: भारत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।
1: नमस्कार।
2: मैं जसवंत सिंह मल्होत्रा मुखातिब हूँ
1: जी
2: आप सबसे।
1: जी जसवंत जी, आप हमसे कई साल से जुड़े हैं और आपके साथ जितने भी अपकमिंग और अच्छे सिंगर्स जुड़े हैं उनके हमने कुछ समय पहले लाइव शोज भी किए हैं, पर आज हम आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि जो रेडियो वितस्ता एक वेब रेडियो था, अब ये अपग्रेड हो गए एक कम्युनिटी रेडियो, यानी FM स्टेशन बना है। हमारी फ्रीक्वेंसी है 90.0 MHz। तो आपको कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए।
2: मैं तहे दिल से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ रेडियो वितस्ता को FM रेडियो बनाने, 90 Hz का FM रेडियो बनाने के लिए, और सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस अच्छी चीज को सर अंजाम दिया। पर मैं ये कहूंगा कि रेडियो वितस्ता ने पिछले कई सालों में, 4 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं
1: जी।
2: हमारे जो बच्चे हैं फिलहार्मोनिक क्लब के, उनको अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म दिए, और आपके फेसबुक पेज के थ्रू ये बच्चे बड़े मशहूर भी हो गए हैं, जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारी श्रोता ये जानना चाहते हैं कि आपके बारे में आप अपनी ही इंट्रोडक्शन खुद ही दे दीजिए।
2: मैं जसवंत सिंह मल्होत्रा, बेसिकली IIT BHU से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, उसके बाद दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में काम किया और चीफ जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हो गया
1: जी।
2: क्योंकि गाना मेरा एक पैशन था, तो उसको मैंने अपने खाली समय को अच्छी तरह से प्रयोग करने का साधन पाया, और अपने पैशन को मैं पूरा कर रहा हूँ। लगभग 5 साल पहले मैंने फिलहार्मोनिक सिंगर्स क्लब का आगाज किया, शुरू किया। अब वो फिलहार्मोनिक ट्रस्ट में भी तब्दील हो गया है, जिसमें ट्रस्ट के थ्रू हम गाने के अलावा मैंने अच्छे अच्छे यंग और टैलेंटेड सिंगर्स को खोजा कोविड के दौरान, और उनको ट्रेनिंग उनकी बाकायदा शुरू करवाई, और अच्छे अच्छे बड़े शोज में हम लोग मिलकर दिल्ली में करते हैं, जिसमें हमारे जो सिंगर्स हैं, यंग चिल्ड्रेन हैं, टैलेंटेड चिल्ड्रेन हैं, उनको लोग अपने प्रोग्राम्स में मौका दे रहे हैं।
1: जसवंत सर, आप ये बताएं कि आप फिलहार्मोनिक क्लब तो चलाते ही हैं और इसके बगैर भी आप बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त में उनके बारे में भी बता दीजिए।
2: कोविड जब हुआ दो वर्ष पहले, तो ये हाल हो गया था कि लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा था, जो डिस्ट्रीब्यूट थे, जिन लोगों को दिहाड़ी के मजदूर थे, तो हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया कि जितने भी कोविड के मरीज हैं उनका, उनसे संपर्क किया जाए और उनके घर पे खाना पहुंचाया जाए।
1: बहुत अच्छी।
2: उसका कोई पैसा नहीं लेते थे हम लोग, उनके घर खाना पहुंचाया लगातार जब तक उनकी डिमांड थी। और साथ ही साथ हमने एक माँ की रसोई के नाम से एक लंगर शुरू किया।
1: जसवंत सर, आपके लिए और आपकी टीम के लिए आज आप इस जो हमारा ये कार्यक्रम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके लिए आज आपने किस सिंगर को चुना है जिनसे हम बात करेंगे?
2: आज के प्रोग्राम के लिए हमने चुना है कैसर सिस्टर्स को। उनमें बड़ी बहन जरताज कैसर 17 साल की, उससे छोटी बहन जरनिगार कैसर 13 साल की, और सबसे छोटी बहन एहसास कैसर बेबी वो 9 ईयर्स की हैं। और ये तीनों बच्चे लगातार कई सालों से संगीत सीख रहे हैं। छोटी वाली एहसास तो 6 साल से संगीत सीख रहे और ये बड़े निपुण हैं अपने गायकी में, और इनको दिल्ली के बहुत सारे प्रोग्राम्स में शिरकत मिल रही है जिसके लिए फिलहार्मोनिक क्लब को मैं खुद बधाई देता हूँ।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत सर। और मैं चाहूंगा कि अब हम जो हमारे आज के मेहमान है उनसे बात करेंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: शुक्रिया जनाब,

0: आइए आज हम आप सबको मिलाते हैं कैसर सिस्टर्स से, और सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं जरताज कैसर का। जरताज, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार जरताज, आप मुझे ये बताइए कि आज कैसर सिस्टर्स में आपके साथ कौन कौन है?
1: आज मेरे साथ कैसर सिस्टर्स में मेरी दो छोटी बहनें हैं, एक है जरनिगार कैसर और एक है एहसास कैसर।
0: जी, मैं आप लोगों से एक लाइव शो में कुछ साल पहले मिला हूं और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम रेडियो पे आपका जो कार्यक्रम है वो सुन रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। जरताज, आप मुझे सबसे पहले, मुझे और हमारे जो श्रोता है उनको आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें।
1: जी, मेरा नाम जरताज कैसर है और मैं 17 साल की हूँ और मैं दिल्ली में शोज वगैरह करती हूँ और मैंने संस्कृत में भी काफ़ी प्लेबैक सिंगिंग कर रखी है और मैं 2019 में गोल्डन वॉइस ऑफ दिल्ली एनसीआर की विनर थी और अभी रिसेंटली मैंने लखनऊ फिल्म क्लब के द्वारा एक गज़ल का कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया था तो मैं उसकी विनर रह चुकी हूँ 2022 में।
0: जरताज, आप संगीत सीखती हैं? अगर सीखती हैं तो कहाँ से सीखती हैं?
1: जी, मैं पंडित किशोर बैनर्जी से पिछले 6-7 साल से क्लासिकल म्यूजिक सीख रही हूँ और अभी मैंने कुछ 2-3 महीने पहले गजल की तालीम लेना शुरू किया है।
0: मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गजल और जो हम गीत या कोई गाना गा लेते हैं, इन दोनों में खास अंतर क्या होता है?
1: अगर जैसे कोई बॉलीवुड सॉन्ग्स, मतलब गजल तो वो चीज हो गई जो मतलब उसमें बस शेर और शायरी वगैरह और उसको बहुत ही मतलब आराम से गाया जाता है, उसमें काफी चीजें होती हैं जो हमारी खुद की होती है, हमारी खुद की इनोवेशंस होती हैं। और बॉलीवुड सॉन्ग्स को वो थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है, मतलब गजल भी होती है बॉलीवुड सॉन्ग्स में, बट वो एक बिल्कुल ही अलग चीज हो जाती है। गजल में हमारे पास काफी टाइम होता है और हम अपने मतलब एक्सपेरिमेंट्स उसमें शो करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं और उसके लिए मतलब क्लासिकल की तालीम होना भी बहुत जरूरी है।
0: बहुत अच्छी बात है और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से जरताज और आपकी दोनों बहनों जरनिगार और एहसास को। उनसे बात करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इन दो बहनों में से बड़ी हैं, तो एक तो आप रियाज करती हैं, तो क्या रियाज करते हुए जो आपकी छोटी सिस्टर एहसास है, क्या रियाज करते भी वो तंग आपको करती है कि नहीं करती है?
1: कभी कभी करती है।
0: तो आप क्यों ना ऐसा करें कि जब आप रियाज करते हैं उनको भी रियाज पे लगाएं ताकि वो भी आपको तंग ना करें और रियाज भी हो जाए।
1: जी जी, हम लोग ज्यादातर तो यही करते हैं कि मतलब अगर मैं क्लासिकल का रियाज कर रही हूँ तो इसको दूसरे रूम में भेज देती हूँ ताकि वो अपने बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह जो भी है उसकी प्रैक्टिस कर ले। और हमारा मतलब ऐसे होता है, एक साथ हम बहुत कम बैठते हैं, अगर हमें तीनों को एक साथ कोई रिकॉर्डिंग करनी हो या कुछ ऐसा गाना तैयार करना हो हम तभी एक साथ बैठ के रियाज करते हैं।
0: जरताज, आप मुझे ये बताएं कि आप हमारे श्रोताओं को आज सबसे पहले क्या सुनाना चाहेंगे?
1: जी, मैं एक लता मंगेशकर जी की एक बहुत ही खूबसूरत गजल है, हम है मताए कोचा, वो सुनाना चाहती हूँ।

0: शुक्रिया।
1: बहुत खूब बहुत खूब सरताज। और मैं देख रहा हूँ कि जब हम आप लोगों से एक शो में मिले थे तब से आज तक आपकी आवाज बहुत निखर गई है। और जब आपने कहा कि आप गजल सीखना भी आपने शुरू कर दिया है तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी आवाज है उसके अलग अंदाज को आप समझ पाते हैं और आप उसको प्रस्तुत कर पाते हैं। सरताज, आपसे जानना चाहूंगा कि आप फिल हार्मोनिक ग्रुप के साथ जुड़े हैं तो जसवंत सिंह मल्होत्रा जी का क्या रोल रहता है आप जैसे बडिंग और अपकमिंग कलाकारों के लिए, सिंगर्स के लिए?
0: जी, जसवंत अंकल का तो हमारे सिंगिंग करियर में काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने हमारे पहले उतने शोज़ वगैरह नहीं होते थे, पर जब से हमने वहाँ पे परफॉर्म वगैरह करना शुरू किया तो बाकी ऑर्गेनाइजर्स वगैरह आते थे सुनने के लिए, उनको हमारी आवाज़ पसंद आती थी तो वो हमें अपने शोज़ में इन्वाइट करते थे। और इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा ये चेंज आया हमारे सिंगिंग करियर में। और वो हमें बहुत यूनिक गाने जो किसी ने सुने भी नहीं है इस टाइप के गाने हमें प्रिपेयर करने के लिए देते हैं और हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
1: हम भी उनको इस चीज़ के लिए साधुवाद हमेशा देते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब कोई भी व्यक्ति हमें हाथ पकड़ के आगे की तरफ ले जाता है और दुनिया के सामने ले आता है तो सबसे अच्छी बात यही होती है। संगम कला ग्रुप के साथ भी आप जुड़े हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं।
0: जी, संगम कला ग्रुप में तो जब मैं फाइनलिस्ट थी तो ये कुछ 2-3 साल पहले की बात है, और इस साल तो हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया जो था 2-3 साल पहले ही था। जी, जर्नीगार ने पिछले साल इसमें पार्टिसिपेट किया था तो वो संगम कला ग्रुप का जो दिल्ली स्टेट फाइनल था उसकी विनर बनी थी।
1: जरताज, आपकी उम्र में जो इस समय सिंगर्स बनना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, और उसके बाद कोई और जो आपका मनपसंद गीत हो वो आप हमें और हमारी श्रोताओं को सुनाएं।
0: जी, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत बचपन से सीखना शुरू किया था, जब मैं 5-5.5 साल की थी तो मेरे बर्थडे पर ही मेरे पापा ने मेरा एडमिशन म्यूज़िक स्कूल में करवाया था एक, तो मैं तब से सीख रही हूँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, और खुद का एफर्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम खुद नहीं चाहेंगे कुछ करना तो कोई हमें कितना भी ये कर ले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें हमारा खुद का शौक होना चाहिए उसके लिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रैक्टिस है और सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, मैंने गज़ल सुनाई थी अभी तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ नया सुना दो, कोई नया गाना।
1: हमारे श्रोता भी खुश हो जाएंगे आपकी आवाज़ में सुन के।
0: जी जी, तो मैं गुरु मूवी से एक बहुत ही फेमस गाना है माया माया, मैं वो सुनाने जा रही हूँ।
1: आप शुरू कीजिए।

0: बहुत खूब
1: शुक्रिया।
0: बहुत खूब बहुत खूब जरताज। और मैं जरताज, आपको पहले भी ये कहा कि आपको अपना रियाज करना है, अपनी जो तालीम है वो लेनी है, और साथ में आपको एहसास का और जरनिगार का ख्याल भी रखना है, क्योंकि आप बड़ी हैं तो आपके लिए जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। हमारी ओर से, रेडियो विदस्ता परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: आइए अब हम जरनिगार से बात करते हैं।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते जरनिगार, आप कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ। और जब हमने शो किया था तब आप आज से थोड़ी छोटी थी, अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है। कैसा लग रहा है आपको आज मेरे साथ इस रेडियो शो में बात करके?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया और बात करने का मौका दिया।
0: जरनिगार, मैं आप तीनों बहनों को हमेशा जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो मैं उसके साथ जुड़ता हूँ, और प्रभु करे आप तीनों बहनों को अपनी मेहर वो आपके ऊपर रखे और आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। सबसे पहले जरनिगार, मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताएं।
1: मैं जरनिगार कैसर हूँ, दिल्ली से हूँ और मैं अभी 13 साल की हूँ। रिसेंटली अभी मैं संगम कला ग्रुप के दिल्ली स्टेट लेवल की फर्स्ट रनर अप बन चुकी हूँ, और मैंने अपने स्कूल को भी स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया है 3 कैटेगरीज में।
0: जी बहुत अच्छी बात है। और आप जो मैं देख रहा था, आप फर्स्ट रनर अप खोज नए फनकार की भी हैं, तो कैसा लग रहा है कि जब आप एक समूह के सामने जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, जब आपको गाना होता तो कैसे आप फोकस अपने गाने पे करते हैं?
1: कोई राज नहीं होता है, बस हमें सोचना, कॉन्फिडेंस पहले से हम लोग अभी प्रैक्टिस इतनी हो गई है गाते स्टेज पे कि हम लोग को अब उतना वो डर नहीं लगता और हम लोग नर्वस नहीं होते हम लोग।
0: okay.
1: तो ये प्रैक्टिस से हो जाता है।
0: और जो आपको इस समय FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर सुन रहे हैं, आप उनके लिए कौन सी पहली प्रस्तुति आज देना चाहेंगे?
1: मैं अभी आपको लता मंगेशकर जी का एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाने जा रही हूँ, नैनो में बजरा छाए।
0: जी शुरू कीजिए।

0: वाह
1: शुक्रिया,
0: वाह वाह वाह जरनिगार, बहुत अच्छे से आपने इस गाने को निभाया, क्योंकि जब कोई भी गाना लता मंगेशकर जी ने गाया हो तो उसको गाने के लिए मैं बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत आपके इस काम में दिख रही है। अच्छा, मैं आपसे एक अलग से सवाल करना चाहता हूँ। आपकी बड़ी बहन है जरताज और छोटी है एहसास, आपको सबसे ज्यादा तंग घर में कौन करती है, जरताज या एहसास?
1: एहसास।
0: अच्छा, एहसास वो रियाज भी करती है और आप दोनों को तंग भी करती हैं?
1: जी, दोनों ही करती हैं।
0: तो क्या आप उनको डांट लगाती हो या प्यार से समझाती हो?
1: डांट लगाती हूँ लेकिन वो सुनती नहीं है, फिर भी तंग करती है।
0: चलिए, अभी हम एहसास के साथ भी बात करेंगे, बट पहले अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कि जैसे एक बच्चा सपोज सिंगिंग में वो जाना चाहता है, उनके उस काम में एक सिंगर, अच्छा सिंगर बनने में पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो आप अपने माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, और मतलब जो चीज़ हमें चाहिए उसके लिए हम लोग उनने कभी मना नहीं किया, और म्यूजिक के फील्ड में हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स इतना सपोर्ट करते हैं हमें, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं कर पाते सब, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने हम लोग के लिए सब कुछ किया।
0: बहुत अच्छी बात है, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे भी कहा जाता है कि हमारे जो बड़े जो हमारे गुरु होते हैं वो हमारे माँ और हमारे पिता होते हैं, और मैं ये जरूर चाहता हूँ, हर एक बच्चे को यही कहता हूँ कि जब तक हम भगवान को, अल्लाह को, किसी को भी हम देखें, उससे पहले हम अपने माता पिता को देखते हैं, और उनकी इज्जत और उनका सहारा हमेशा हर एक बच्चे को मिलता रहे, और इसके लिए हम अपनी ओर से आप सबको शुभकामनाएं देते हैं।

0: हेलो नमस्ते एहसास, कैसे आप? कैसी हैं?
1: नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ। और हमारे जो सुनने वाले हैं वो बहुत उतावले हो रहे हैं एहसास को सुनने के लिए। वैसे तो हमने उनको बोला है कि हम एहसास से बात करेंगे, बट आपका नाम है एहसास कैसर। जितनी एहसास बड़ी है, नाम उससे बड़ा नहीं लग रहा, या अब एहसास बड़ी हो गई है?
1: मैं बड़ी हो गई हूँ।
0: मैंने आपका एक गाना देखा है जो आपने जसवंत अंकल के साथ गाया था, और आपने काली स्पेक्स पहनी थी। वाह वाह, क्या कमाल का गाना था वो। और शरारतें कौन करता है आपके घर में, जरताज या जरनिगार?
1: अगर ज्यादा शरारती की बात हो तो मैं ही करती हूँ, लेकिन दोनों में से जरताज को कह सकते।
0: चलो अच्छा, ये बताओ कि जब जरताज और जरनिगार घर में रियाज करते हैं, तो क्या आप गौर से और ध्यान से उनको रियाज को देखते हैं, सुनते हैं?
1: मैं ज्यादातर सुनती हूँ, बाकी कभी कभी शरारती करते हूँ।
0: जो बच्चा शरारत नहीं करेगा वो बच्चा कैसा हो गया? तो इसलिए एहसास शरारतें बरकरार रखनी है, पर जब रियाज करना है तब जो फोकस है वो रियाज पे करना है। और आपके बारे में जो मेरे पास जानकारी है, बहुत सारे काम आपने किए हैं, बहुत सारे शोज आपने किए हैं, तो हमारे रेडियो विदर्शा के सुनने वालों को आप सबसे पहले क्या सुनाएंगे?
1: मैं आशा भोसले जी का एक सॉन्ग सुनाना चाहूंगी, सत्तूबा।
0: हाँ, आप शुरू कीजिए।

0: बहुत खूब
1: शुक्रिया।
0: एहसास बहुत खूब एहसास वाकई आपने कहा कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ तो 9 साल की एहसास कैसर वाकई बड़ी हो गई। इतना मुश्किल गाना आपने लिया और आपने बखूबी उसको पेश किया हमारे श्रोताओं के लिए। अच्छा मुझे एहसास एक बात बताओ, जब आप स्कूल जाती हैं आपके वहाँ पर जो दोस्त हैं, क्या आपके दोस्त आपको स्कूल में भी कहते हैं कि एहसास कोई गाना सुनाओ?
1: कभी कभी कहते हैं।
0: और आप सुना भी देते हो?
1: हाँ।
0: अच्छी बात है, क्योंकि एक कलाकार जो होता है उसके लिए कोई स्टेज की जरूरत नहीं होती है, जहाँ पर वो कलाकार है वहीं से स्टेज की शुरुआत होती है। ठीक है बेटा
1: जी।
0: अच्छा आप मुझे ये बताओ कि जिंदगी में आपका लक्ष्य क्या है, कहाँ तक पहुँचना है आपने?
1: मेरा ये लक्ष्य है कि मैं जब मैं बहुत बड़ी स्टार बनूं और सब लोग मुझे मेरे गाने से मेरे आवाज से पहचाने।
0: और अगर उस समय जब मैं आपके सामने आऊं तो क्या मुझे आपको मिलने का मौका मिलेगा जब आप बहुत बड़ी स्टार बनी होंगी?
1: जी जरूर।
0: मैं ये चाहूंगा कि अब आप तीनों बहनें साथ आएं और मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के समापन पर हम तीनों बहनों से एक गाना सुने। उससे पहले एहसास मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप मम्मी पापा को क्या कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से?
1: मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा बचपन से ही बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। उन्होंने कहा है कि तुमको जो भी करना है तुम कर सकती हो, अगर किसी दूसरे फील्ड में जाना है तो उसमें भी कर सकती हो। और उन्होंने कहा है कि जो भी तुम्हें म्यूजिकल चीज़ें खरीदनी हो वो हमें बताना, हम लोग थोड़ा सा भी लेट नहीं करेंगे। और हमेशा हमारी बहुत मदद की है, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है।
0: हमारी ओर से रेडियो मितवस्ता परिवार की ओर से आप तीनों बहनों को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं चाहूंगा कि जरनिगार और जरताज भी अब आपके साथ ज्वाइन करें। जरताज आप मुझे ये बताएं कि इस छोटे से कार्यक्रम में अंतिम दौर में आप तीनों बहनें हमें और हमारे श्रोताओं को क्या सुनाना पसंद करेंगे?
2: हम अभी आपको एक ट्रिपलेट सॉन्ग सुनाने जा रहे हैं, देखो मौसम क्या बाहर है।
0: शुरू कीजिए।

0: शुक्रिया।
1: वाह वाह, आप लोगों ने तो मौसम ही बदल दिया, जैसे हम कहते हैं कि जरताज जरनिगार एहसास, आपने तो मौसम बदल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, और इस कार्यक्रम को मैं यहीं समाप्त करता हूं। और हमारी ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से, FM 90.0 मेगाहर्ट्ज की ओर से, आप तीनों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका करियर ऐसे ही चलता रहे, आपकी आवाज ऐसे ही खुशनुमा होती रहे और लोगों को एंटरटेन करते रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
2: जी
1: शुक्रिया,
2: नमस्कार।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिचर्चा। आज के मेहमान थे कैसर सिस्टर्स, जरताज कैसर, जरनिगार कैसर और एहसास कैसर। रिकॉर्डिस्ट दीपक कुमार। निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता भारत सुपोरी।

दोस्तों भोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हूं भोजन रूजियो पनिन पसंदीदा बात।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहे।

0: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।
1: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
2: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vitasta Hamsafar Zindagi Ka Ambala Kent's first community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting Government of India
3: Tochu Bozan FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी हूँ।
4: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: तुसी सुन रहे हो अम्बाला दा अपना रेडियो।
2: कर दिया मेरे ते जो सर्दियां ते नाल फुटवा कराउन जो
1: रेडियो वितस्ता
3: असले पौन पटाके
2: सुन मेरे दिलदारा मेनू
1: 90.0 मेगा

रहो अपने पसंदीदा गीत। आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: घी दालच महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: آج کل بھارت کے گاؤں گاؤں میں چھتوں کا روپ بدل گیا ہے۔ جہاں پہلے چھتوں پر صرف پاپڑ اور کپڑے سوکھتے تھے، وہاں پر اب بجلی بل زیرو ہو رہے ہیں۔ گاؤں گاؤں میں لوگ سولر پینل لگوا رہے ہیں۔ آپ بھی لگوا لیجئے۔ 78,000 کی سبسڈی دے رہی ہے بھارت سرکار۔ 30,00,000 سے ادھک پریوار تو اس کا لابھ اٹھا چکے ہیں۔ پی ایم سوریا گھر مفت بجلی یوجنا سے جڑنے کے لیے رجسٹر کریں PM Surya Ghar.gov.in پر۔
2: ہر گھر سوریا گھر۔
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 6। आज के हमारे आमंत्रित मेहमान है श्रीमती कविता अग्रवाल और आज का विषय रहेगा परिवार और समाज। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का।
3: آپ سن رہے ہیں 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا۔ نمسکار، میں ہوں آپ کی ریڈیو دوست کرنی اور آپ سن رہے ہیں گھر پریوار کا ایک نیا انک۔ آج ہمارے ساتھ ہے ایک ایسی شخصیت جو نہ کیول اپنے پریوار کی آدھارشلا ہے بلکہ سماج کے پرتی بھی گہری سنویدنشیلتا اور ذمہ داری رکھتی ہے۔ انہوں نے اپنے جیون میں پریوار اور سماج کے بیچ سنتولن کو سمجھنے اور اسے साकार करने का जो प्रयास किया है वो प्रेरणादायक है। आइए स्वागत करते हैं कविता अग्रवाल जी का, जो आज हमें परिवार और समाज के विषय पर अपने विचारों से समृद्ध करेंगी।
4: किरणी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका प्रदान करा कि मैं अपने विचार, परिवार और समाज के प्रति मेरे जो भी विचार हैं वो मैं अपने श्रोताओं से साझा कर सकूं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने का। मेरा पहला प्रश्न आपसे है, हम अक्सर सुनते हैं कि परिवार और समाज एक दूसरे के पूरक है, लेकिन हर किसी के पास इसकी अपनी परिभाषा होती है। मैं जानना चाहूंगी कि आपके दृष्टिकोण से परिवार और समाज का क्या अर्थ है।
4: देखिए, जिन लोगों के बीच हम सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां हमें जजमेंट का डर नहीं होता, हम उन्मुक्त होकर अपने विचार रख सकते हैं, अपनी डिमांड्स रख सकते हैं, जहाँ पर हम फिजिकली और इमोशनली सुरक्षित महसूस करते हैं, जिन लोगों पर हम अपना हक जता सकते हैं, और जहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे की फिक्र करता है और एक दूसरे की जिम्मेदारी लेता है, उसे हम परिवार कह सकते हैं। लेकिन जब हम समाज की बात करते हैं, तो जैसे ही हम अपने घर परिवार से बाहर कदम रखते हैं, तो जो लोग हमें मिलते हैं वो हमारा समाज है, जिन्हें हम जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, परंतु उनके प्रति हमारी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है जिसे हमें निभाना ही निभाना है। निभाना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई हमारी स्ट्रिक्ट जिम्मेदारी नहीं है कि हमें उसको निभाना है। उसे हम समाज कह सकते हैं। सब परिवार हैं जो, वो मिलकर एक समाज बनाते हैं और सब समाज मिलकर देश बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं परिवार सबसे छोटी इकाई है और समाज का ही हिस्सा है। हम यह भी कह सकते हैं कि समाज वह जन समूह है जिन्हें हम निजी तौर पर नहीं जानते, ना ही वो और ना ही हम एक दूसरे के दुख सुख के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन फिर भी हम आपस में बंधे हुए हैं एक मजबूत डोर से।
3: बहुत सही कहा आपने, बहुत ही गहराई से समझाया आपने। ये सही है कि परिवार और समाज एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं। आपका दृष्टिकोण वाकई सोचने पर मजबूर करता है। परिवार और समाज के इस जुड़ाव को हम अपने जीवन में कैसे महसूस कर सकते हैं, ये आपने बहुत खूबसूरती से समझाया। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है, परिवार और समाज को हमेशा एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना गया है, आपकी नज़र में इन दोनों के बीच का संबंध किस तरह का है? क्या ये रिश्ता परस्पर सहयोग पर आधारित है या इनमें से कोई एक दूसरे पर अधिक निर्भर करता है?
4: देखिए किरणी जी, ये संबंध जो है ना, ये बहुत ही गहरा संबंध है। हम हर वक्त अपने घर पर नहीं रह सकते। जैसे ही हम अपने परिवार से बाहर निकलते हैं, हम अपने आप को समाज में पाते हैं, या फिर यूं कहिए हम ही वो समाज हैं। हम उसका एक अभिन्न अंग हैं, हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। और ये हर एक व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है कि उन्हें कैसा समाज चाहिए। जो जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमें बनना पड़ेगा। अगर हम फूल बांटेंगे तो बदले में फूल ना भी मिले, कम से कम हमारे हाथ तो महकेंगे ना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कई परिवार मिलकर समाज बनाते हैं और एक बड़ा परिवार बन जाता है, तो यह हम सबका उत्तरदायित्व है। अपने परिवार की तरह सबसे निस्वार्थ प्रेम करें, सबके साथ सहज रहें और बिना किसी को जज करे उसका साथ दें, उसको सपोर्ट करें। तभी तो हम, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं और हमारे भारतीय संस्कृति की बहुत ही एक मशहूर लाइन है वसुदेव कुटुंबकम, तभी तो हम इस नारे को सच कर पाएंगे कि जो हमारा सारा विश्व है वो ही हमारा परिवार है। संबंध तभी बनता है जब दोनों तरफ से सहभागिता हो। अगर हम समाज को अपना परिवार समझेंगे तभी उसके लिए चिंतित होंगे और तभी उसके लिए हम कुछ कर पाएंगे, सच्चे मन से कुछ कर पाएंगे। बाकी संबंधों की तरह यह भी गिव एंड टेक का रिश्ता है। जैसा दोगे वैसा पाओगे। जैसा समाज हमें चाहिए तो हमें अपने आप को उस समाज में फिट करने के लिए वैसे ही एक्शंस करने पड़ेंगे, वैसी ही विचारधारा रखनी पड़ेगी, तभी हम एक मजबूत और एक फ्रूटफुल समाज बना पाएंगे।
3: सही कहा आपने, सचमुच परिवार और समाज के बीच ये तालमेल बेहद अहम है। आपकी बात से ये साफ होता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारी बातचीत के दौरान हमने परिवार और समाज के बारे में कुछ सीखा, लेकिन अब थोड़ा म्यूजिक का मजा लेते हैं। कविता जी, हम जानते हैं कि हर किसी का कोई ना कोई पसंदीदा गाना होता है जो उनके दिल के बहुत करीब होता है, तो आपके पसंद का कौन सा गाना हम श्रोताओं को सुनाएंगे अब?
4: देखिए, जो पुराने गाने हैं वो सारे ही मेरे दिल के बहुत करीब हैं, परंतु एक गाना है जो मुझे बेहद पसंद है। क्या मैं उसे गुनगुना सकती हूँ?
3: हाँ जी जरूर।
4: तो वो इस तरीके से है

0: प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो अगला प्रश्न मेरा है वो है, आज के समय में जब व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, परिवार की जिम्मेदारियां और सामाजिक दायित्व तीनों के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती बनता जा रहा है, आपकी राय में परिवार और समाज के बीच ऐसा संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है जो न केवल व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करे बल्कि सामूहिक हितों को भी बनाए रखे।
1: देखिए, आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है। संतुलन शब्द जो है ना, वो अपने आप में बहुत ही नाजुक है। जब हमें संतुलन बनाना पड़े, चाहे वो रिश्तों में हो, खाने में हो, बातचीत में हो या समाज में हो, तो बहुत ही नाजुक कार्य है, क्योंकि जरा सा भी बैलेंस इधर उधर हुआ तो सब बिगड़ जाता है। अब क्योंकि परिवार और समाज दोनों का दायित्व हमारा है, तो हमने दोनों को ही समय देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर हम परिवार को ही सामाजिक कार्यों में सहभागिता दे दें तो कभी भी संतुलन नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी दूसरे से एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, और व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। ऐसे में व्यक्ति पहले अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, बाद में वो किसी और से एक उम्मीद करेगा। इसे हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए परिवार का कोई सदस्य किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा बनना चाहता है। अब वो अपने कार्यालय से या अपने व्यवसाय से तो समय नहीं निकाल सकता, उसके समय के साथ वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता, तो अब उसको जो समाज को समय देना है वो अपने पारिवारिक समय में से ही वो समय निकालेगा, जो कि परिवार के लिए एक खिज का, एक चिड़ का कारण बन सकता है। उसकी समाज के प्रति एक नकारात्मकता भी आ सकती है कि हमारे समय में से वो समाज को समय दे रहा है, और ऐसा होना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या कर सकता है, समझदारी से काम लेते हुए वो अपने सारे परिवार के सदस्यों को उस कार्य का हिस्सा बना सकता है। उससे होगा क्या कि सारा परिवार एक साथ काम करेगा तो वो एक फैमिली टाइम स्पेंड कर पाएंगे, और जो हमारा लक्ष्य था हम उसको भी पूर्ण कर पाएंगे
0: जी।
1: लेकिन इसमें उस व्यक्ति को बहुत ही पेशेंस रखनी पड़ेगी और बहुत ही प्रेम से ये कार्य करवाना पड़ेगा, क्योंकि घर के हर सदस्य की सोच और विचारधारा अलग होती है। उसको हमें अगर अपनी विचारधारा में लाना है तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, तभी हम अभी इस कार्य को अपना पूरा कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर हम सबकी साझेदारी होगी उस कार्य को करने में, तो किसी को हमसे शिकायत भी नहीं रहेगी, हम साथ में समय भी व्यतीत कर पाएंगे, और जो हमारा लक्ष्य है समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का, हम वो भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।
0: ये सुझाव बहुत प्रैक्टिकल और प्रेरक है। संतुलन बनाए रखना शायद आसान नहीं, लेकिन छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। संतुलन का ये विचार हमारे श्रोताओं के लिए बेहद उपयोगी रहेगा। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो मेरा अगला प्रश्न है वो है, आज के व्यस्त जीवन शैली में परिवार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां अक्सर पीछे छूट जाती हैं। आपकी दृष्टि में क्या हम अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं जो न केवल हमारे परिवार को मजबूत बनाए बल्कि समाज के प्रति भी हमारा योगदान को बढ़ाए?
1: निश्चित तौर पर जब परिवार की बात आती है ना, तो हम किसी भी बदलाव के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो कोई दैनिक बदलाव हो, चाहे हमें अपनी कोई डेली रूटीन में कोई चेंज लाना पड़े, तो हम परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन जब समाज की बारी आती है तो हम कुछ कुछ एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं कि मेरे पास तो समय का अभाव है, या फिर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या कुछ भी ABCD, हम कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं जब समाज की बात आती है। और इसकी वजह ये है कि हम समाज को ना अभी तक अपना नहीं बना पाए हैं। जब तक हम उसको अपना परिवार नहीं समझेंगे, तब तक हम उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा पाएंगे, तब तक हम उसकी किसी भी काम को करने के लिए वो डेडिकेशन हमारे अंदर आएगी ही नहीं, हम अपना योगदान उस तरीके से नहीं दे पाएंगे जैसा हम अपने परिवार के लिए देना चाहते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा एक सेफ समाज बने। आज के टाइम में हम अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में क्यों डरते हैं? सबसे बड़ा कारण क्या है? समाज, कि समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं। हमें यही डर लगता है कि हमारे बच्चे बाहर जाएंगे तो किसी गलत संगत में ना पड़ जाएं, गलत लोगों की कंपनी में आके गलत आदतें ना सीख जाएं। आप सोचिए, अगर एक सुरक्षित और प्रेम भरा समाज होगा तो क्या हम बच्चों को बाहर भेजने से डरेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम निश्चिंत होकर अपने बच्चों को बाहर भेज सकते हैं, लेकिन ये समाज हम लोगों से बना है, ये अपने आप तो अच्छा नहीं बनेगा।
0: इसलिए हमें पहले अपने आप में बदलाव लाना चाहिए।
1: जैसा हम चाहते हैं कि समाज हो, हमें वैसे ही एक्शंस करने पड़ेंगे। जैसे बच्चों के लिए कहा जाता है ना कि बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, बजाय कि वो जो सुनते हैं वो करेंगे। तो यही सबके लिए है। अगर हम चाहते हैं समाज में प्रेम फैले, सब मिलजुल के रहें, तो ये हमें अपने परिवार से शुरू करना पड़ेगा। परिवार में हम करेंगे, बच्चे देखेंगे, सीखेंगे, घर के बाकी सदस्य भी यही सीखेंगे, और फिर जब वो बाहर जाएंगे तब तक वो इनकी आदत में शुमार हो चुका होगा। तो फिर वो सभी के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा परिवार में करते हैं, और निसंदेह फिर हमारा समाज एक शांतिपूर्ण, एक प्रेम भरा समाज बन जाएगा, जो हमें बिल्कुल अपने परिवार की तरह लगेगा। चाहे हम घर के अंदर हैं, चाहे घर के बाहर हैं, हमें एक जैसा फील होगा। हमें ये नहीं लगेगा कि हमें कुछ चीजों को जबरदस्ती फॉलो करना है, कुछ रूल्स को फॉलो करना है, क्योंकि वो हम सबके बनाए हुए हैं और हम सबके लिए हैं। तो वो एक इक्वालिटी आ जाएगी हर चीज के अंदर। तो ये बहुत ही एक, जैसे सत्ययुग हम जिसको कहें, वो वाला माहौल हो जाएगा। ये हमारे ही हाथ में है कि हमें कैसा समाज बनाना है,
0: क्योंकि परिवारों का समूह ही तो समाज है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, परिवारों का समूह ही समाज है, और उस पर समाज को बनाने वाले हम लोग ही हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें खुद को और अपने आने वाली जनरेशन को कैसा समाज देना है, इस देश को कैसे नागरिक देने हैं। तो हमें उसी जिम्मेदारी के साथ काम करना है इस समाज को एक अच्छा बनाने के लिए। तो उसके लिए हम छोटे छोटे दैनिक परिवर्तन कर सकते हैं, कि जैसे अगर हमें घर में या घर से बाहर सफाई रखने की आदत नहीं है तो हम शुरुआत कर सकते हैं उसकी। अगर हमें क्रोध आता है तो हम उस क्रोध पे थोड़ा काबू पा सकते हैं, घर में भी और घर के बाहर भी। बिल्कुल इतने माइनर चेंजेस हैं ये, जिनका हमें पता भी नहीं चलेगा। ना हमें इनके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं, ना इनके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम देना है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे वो ऐसा असर दिखाएगा, एक ऐसा समाज बन जाएगा जिसकी हम कल्पना तो जरूर करते हैं, लेकिन अभी तक हमने उसको देखा नहीं है। वो हमारी कल्पना सच में बदल जाएगी अगर हम ये छोटे छोटे बदलाव अपने जीवन में शामिल कर लें, और औरों को भी प्रेरित करें कि वो भी यही सब करें।
0: हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। छोटे बदलाव वाकई बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। हर किसी को अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। अब हम इस खूबसूरत बातचीत को थोड़ा संगीत से जोड़ते हैं। कविता जी, आपका पसंदीदा गाने के साथ कुछ और पल हम एक साथ बिताएं, आइए सुनते हैं ये गाना।

0: अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों की जो हमारे जीवन को सरल और स्वस्थ बना सकते हैं। कविता जी, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पुराने घरेलू नुस्खे कितने प्रभावी हो सकते हैं। क्या आप हमारे साथ कोई ऐसा नुस्खा शेयर करना चाहेंगी जिसे आप खुद कभी इस्तेमाल किया हो और जो बहुत फायदेमंद साबित हुआ हो?
1: किरणी जी, अगर घरेलू नुस्खों की बात करें तो जो हमारी रसोई है ना, वो खजाना है नुस्खों का। उसमें आपको अधिकतर हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा। वो तो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग अंग्रेजी दवाइयों का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो हमें एकदम से आराम देती है। जो घरेलू नुस्खे हैं वो थोड़ा स्लो आराम देते हैं, लेकिन उनका फायदा ये है कि उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो अगर हमारी रसोई के अंदर आपको हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा। अब आजकल जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है, अक्सर हमें खांसी की शिकायत हो जाती है, तो मैं आपसे एक छोटा सा नुस्खा शेयर करूंगी जो जिसके लिए ना आपको कोई एक्स्ट्रा सामान लाने की जरूरत है, ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत है। इसके लिए हमें केवल दो चीजों की जरूरत है, एक है हल्दी और एक गुड़, जो बड़ी आसानी से हम सबकी पाकशाला में मिल जाता है। तो आपने करना क्या है, बराबर मात्रा में हल्दी और गुड़ लेकर अच्छे से मिला लेना है और उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। गुड़ क्योंकि मीठा स्वाद होता है तो इसको बच्चे बड़े हर कोई ले सकता है। जब भी खांसी हो इस गोली को, इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर इसको मुंह में रखें और चूसते रहें, क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें हैं तो इनका कोई नुकसान भी नहीं है। तो आप इसको दिन में 3-4 बार भी ले सकते हैं, और छोटे बच्चे हैं अगर वो नहीं लेते तो आप उनको रैपर में लपेट के टॉफी की फॉर्म में भी उनको दे सकते हैं। उससे क्या होगा, डबल फायदा होगा, उनको टॉफी का स्वाद भी मिल जाएगा और उनकी खांसी में भी आराम आ जाएगा।
0: बहुत अच्छा नुस्खा, क्योंकि हल्दी जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। ये कई बीमारियों को जैसे कैंसर तक को हल्दी ठीक करती है। कविता जी, ये नुस्खा तो बिल्कुल ही शानदार है। यहाँ हमें याद दिलाता है कि पुराने समय के इन छोटे छोटे उपायों में कितनी ताकत होती है। अब इन चमत्कारी नुस्खों के बीच एक और चमत्कारी चीज है, वो है संगीत। तो क्यों ना हम इस जानकारी पूर्ण पल को और भी खास बनाने के लिए आपके पसंदीदा गाने के साथ इसे और भी खूबसूरत बनाए।
1: गाने तो बहुत है लेकिन हम हर पल की कद्र नहीं करते। एक गाना है

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर परिवार। अब इस कार्यक्रम का अंतिम भाग, अब हम बात करेंगे एक ऐसी रेसिपी के बारे में जो न सिर्फ स्वादिष्ट हो बल्कि पौष्टिक भी हो। आपने हमें बताया कि आपको ऐसे व्यंजन पसंद है जो सेहत के लिए अच्छे हैं और साथ ही खाने में भी मजेदार है। क्या आप हमें अपनी पसंदीदा पौष्टिक और स्वादिष्ट रेसिपी के बारे में बताना चाहेंगे?
1: जरूर किरणी जी, मुझे कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक है और मैं कुछ कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं बच्चों को हेल्दी खिलाऊं। सिर्फ बच्चों को नहीं, घर के सभी सदस्यों को हेल्दी भोजन खिलाऊं जिसमें उनको पौष्टिकता मिले और बाहर से बनी चीजों से उनका जो एक अट्रैक्शन है वो कम हो जाए। मीठे की क्रेविंग अक्सर हम सबको रहती है, खाना खाने के बाद मन करता है कुछ मीठा खाएं, लेकिन आजकल क्योंकि सब कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो हमें ये डर रहता है कि हमने इतनी शुगर कंज्यूम कर ली है, अगर हम क्रीम की फॉर्म में लेते हैं तो हमने इतना मीठा खा लिया है। तो आज एक रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी गिल्ट फ्री है, आप उसको जी भर के खा सकते हैं, ना आपको एक्स्ट्रा फैट मिलेगा उससे, ना एक्स्ट्रा शुगर मिलेगी और हेल्थ बेनिफिट्स इतने हैं कि आपको रेसिपी सुन के ही समझ में आ जाएगा। रेसिपी का नाम तो बड़ा कॉमन है, वो है फ्रूट क्रीम, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल अलग हैं। अक्सर फ्रूट क्रीम हम फ्रूट्स क्रीम और उसमें मीठा कुछ भी फॉर्म में, चीनी कुछ भी डाल के हम उसको बनाते हैं, लेकिन जो हमारी रेसिपी है इसके अंदर आप फ्रूट्स लीजिएगा अपनी चॉइस के, उनको बारीक चॉप कर लीजिए। क्रीम की जगह यहाँ पर हम डालेंगे 2-3 चम्मच गाढ़ा दही। दही के अंदर ना तो फैट होता है ना कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सारे इसके जितने बेनिफिट्स हैं दही के वो हम सब जानते हैं। और साथ में वैसे तो फ्रूट्स में अपना नेचुरल तौर पे काफी मीठा होता है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि थोड़ी सी मीठे की जरूरत है तो आप इसमें 1/2 चम्मच हनी डाल सकते हैं या फिर 1/2 चम्मच शक्कर डाल सकते हैं जो चीनी के मुकाबले कम नुकसानदेह है। आप इसको खा के देखिए और यकीन मानिए कि बच्चे जल्दी से नहीं बता पाएंगे कि ये आपने क्रीम में नहीं बल्कि दही में बनाया है। और फ्रूट्स होने की वजह से पौष्टिक तो है ही है और इतनी फिलिंग रेसिपी है ये, अगर आप इसका एक बोल ब्रेकफास्ट में खा लें तो आई थिंक आपकी ब्रेकफास्ट की नीड को ये एकदम से कंप्लीट कर देता है। आप किसी भी टाइम इसको खा सकते हैं और अच्छा फिलिंग और टेस्टी और गिल्ट फ्री रेसिपी है ये। तो मेरी सलाह है कि आप सब इसे जरूर ट्राई करें, जो बच्चे दही नहीं खाते या फ्रूट नहीं खाते उनको खिलाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है।
0: आपकी ये रेसिपी न केवल स्वादिष्ट बल्कि सेहत के लिहाज से भी बेहतरीन लग रही है। हम सबको यकीन है कि ये डिश घर में हर किसी को खुश कर देगी। कविता जी, इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इस विचारशील चर्चा से श्रोताओं ने भी कुछ नया सीखा होगा। जीवन के इस सफर में हम सब मिलकर एक सशक्त परिवार और समाज बना सकते हैं। क्यों ना हम सुने आपका एक और पसंदीदा गाना जो हमेशा आपके दिल के करीब रहता है। इस गाने के साथ हमें वो खास एहसास मिलेगा जो इस पल को और भी यादगार बना देगा।
1: मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ रेडियो वितस्ता का, जो अम्बाला कैंट का अपना रेडियो स्टेशन है। मुझे लगता है इस रेडियो स्टेशन के जरिए अम्बाला के लोगों को बहुत ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा, वो अपने विचार लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे और तो और वो अपने व्यवसाय को और अपनी और विचारधारा को लोगों तक पहुंचा पाएंगे इसके जरिए। भारत जी, किरणी जी का ये बहुत बड़ा तोहफा है अम्बाला कैंट को, जिसके जरिए अम्बाला के लोग आपस में जुड़ जाएंगे और एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। रेडियो वितस्ता अम्बाला का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कार्यक्रम के अंत में हमारा संदेश है, कभी रिश्तों में बसी होती है एक ऐसी खामोशी जो परिवार और समाज को जोड़ने की होती है एक कोशिश। जहां अपनों का साथ होता है वहां ताकत का एहसास होता है। समाज भी उस शक्ति से महकता है जब हर दिल में प्यार का एहसास होता है। रिश्तों के उस प्यारे सागर में हर व्यक्ति एक लहर है। साथ चलने से ही हम समाज को समझते हैं और संवारते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 6। आज के हमारे आमंत्रित मेहमान थे श्रीमती कविता अग्रवाल। आज का विषय था परिवार और समाज। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आज किन्नी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा, आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विथस्ता, हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विथस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

सुनिए बप्पी लाहिरी के दिल छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

सुनें अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ।
3: ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੋ।
2: ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ
4: ਅਸਲੇ ਪਾਉਣ ਪਟਾਕੇ
3: ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲਦਾਰ ਮੈਨੂੰ
2: 90.0 ਮੈਗਾ

आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

दो छु भोजन FM नमत आचार्य सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन भोजन रूजिव पनि पसंदीदा बात।

मशहूर सिने और नाटक अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे पुत्र शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर सन 1931 को मुंबई में हुआ था। 8 साल की उम्र से ही वो पापा के साथ नाटकों में काम करने लगे थे। शम्मी 5वीं में थी तो अक्सर नाटक प्रस्तुत करने के लिए पापा के साथ दूसरे शहरों में जाया करते थे। इससे वो कभी ठीक से स्कूल नहीं जा पाए। उनके स्कूल न जाने की वजह से हेडमास्टर ने शम्मी का नाम काट दिया। जब इस बात की जानकारी पृथ्वीराज कपूर को हुई तो उन्होंने शम्मी का नाम दूसरे स्कूल में लिखवा दिया। साथ ही शम्मी को मुंबई से बाहर ले जाने का सिलसिला भी बंद कर दिया। पृथ्वीराज चाहते थे कि शम्मी की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। मैट्रिक की परीक्षा के बाद पापा ने पूछा कि आगे क्या करने का इरादा है।

तो शमी का जवाब था कि अब आगे पढ़ने के बजाय बड़े भैया राज कपूर की तरह वो भी फिल्मों में उतरेंगे। इस पर पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम हमें हीरो बनकर दिखाओ। तुम्हारे इस काम में ना मैं मदद करूंगा और ना राज कपूर। तुम्हें अपने बूते पर फिल्मों में काम पाकर

ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि पूरे आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ फिल्मों में काम तलाशना शुरू कर दिया। वो हर दिन फिल्म निर्माताओं के घर चक्कर लगाने लगे। मगर कोई शम्मी को अपनी फिल्म में काम देने को राजी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने काम की तलाश

एक रोज वो निर्माता निर्देशक महेश कौल से मिले तो उन्होंने शम्मी को अपनी फिल्म जीवन ज्योति में बतौर हीरो का रोल देने का फैसला किया। फिल्म की हीरोइन चांद आसमानी भी पहली बार इस फिल्म में काम कर रही थी। जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आई तो शम्मी कपूर रातों रात हीरो बनकर दर्शकों के दिलो दिमाग पर

जीवन ज्योति के बाद निर्माता केदार शर्मा ने अपनी फिल्म रंगीन रातें में शम्मी को हीरो का रोल दिया, जिसमें माला सिन्हा हीरोइन थी। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली भी केदार शर्मा की फिल्मों में काम कर रही थी। इस बीच गीता बाली और शम्मी कपूर में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार परवान चढ़ने लगा।

फिल्म कॉफी हाउस मिस कोको कोला में गीता बाली शम्मी कपूर ने साथ काम किया और ये जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। शम्मी कपूर ने गीता बाली को लेकर अपनी मम्मी से चर्चा की तो मम्मी ने ये बात पृथ्वीराज यानी शम्मी के पापा को बता दी। जब पृथ्वीराज को शम्मी की अपनी मर्जी से शादी करने की बात पता चली तो उन्होंने शम्मी को बुलाकर खूब डांट पिलाते हुए कहा कि कोई हीरोइन कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती, लेकिन बड़े भाई राज कपूर और भाभी कृष्णा ने पापा से सिफारिश की, किसी तरह इस शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन शादी से पहले एक शर्त रखी कि शादी के बाद हमारी बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी। गीता ने उनकी ये बात खुशी खुशी

0: पे असर, मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकु सुकु,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकु सुकु खो गया दिल मेरा, सुकु सुकु अय्या करूँ मैं क्या, सुकु सुकु।
2: रफी की आवाज उन पर सटीक बैठती थी, अदाकारी की उनकी बिंदास शैली हमेशा के लिए मशहूर हो गई। जैसे याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे वाले उनके स्टाइल को भला कौन नहीं जानता। रफी के गीतों ने शम्मी को सितार बनाया तो शंकर जयकिशन के संगीत ने उनमें चाशनी पिरोई।
0: हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं।

गीता बाली का सन 1966 में निधन होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी सन 1969 में नीला देवी से की। आज शम्मी कपूर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बिंदास अदाकारी हमारे दिलो दिमाग पर अभी भी

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: ताज महल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारे ये प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: बधाई हो ताऊ, अपना मनोज 12वीं में अच्छे नंबर से पास हो गया।
3: वाह बेटा, नाम रोशन कर दिया गांव का।
2: बस आप लोगों का आशीर्वाद है।
3: अब आगे क्या करने का सोचा है?
2: आगे का तो अभी फिलहाल,
3: रे अब उसे हरियाणा की किसी आईटीआई में दाखिला दिला दे, ताकि वक्त रहते अपने हुनर को संवारे और जीवन में आगे बढ़ सके। प्रदेश के युवा राज्य की 197 सरकारी व 180 प्राइवेट आईटीआई में 1 या 2 साल के कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें कुल 93 ट्रेड्स में 80,000 से ज्यादा सीटें हैं।
4: अधिक जानकारी हेतु www.itiharyana.gov.in पर लॉगिन करें अथवा निकटतम आईटीआई में संपर्क करें।
5: प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 4। प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी। रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने। निर्देशन भारत सोपोरी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सभी श्रोताओं को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। लेकर आई हूं रेट्रो हिट्स का एक और नया अंक। इस अंक में आज हम बात करेंगे विश्वास की, और उसी पर आधारित आपको कुछ गाने भी सुनाएंगे। विश्वास। विश्वास है एक आईना, जो टूट जाए तो मुश्किल है जुड़ना। दिल से जो एक बार उतर जाए तो फिर मुश्किल है संभालना।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 4, प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: उस पथ

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: नब्बे आशारिया सिफर FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

फिल्मी गीतों पर आधारित प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते। मैं तुझको कैसे समझाऊं, तू प्यार की बातें क्या जाने, तू झांक रही माजी में, ना देख उसे, ना देख उसे, आ तुझको सुनाऊं मैं कहानी तेरी, तू अपना फसाना क्या जाने।

अगर तुम मिल गए होते तो शायद हमारी मंजिल का बंटवारा नहीं हो पाता और ये सफर हमारी खोई हुई पहचान को जिंदा रखता, लेकिन ये ना हो सका और सिमट गई हमारी ये छोटी सी दुनिया इस अंधेरे कोने में, जहां रोशनी का कोई नामो निशान तक

भी खामोश। और आज की शब ये सितारे बिना चांद के तन्हाई महसूस कर रहे हैं। माना कि इस शब की खामोशी को चीरती हुई तुम्हारी दर्द भरी आवाज मुझे तुम्हारे पास पास होने का एहसास कराता है। पर क्या तुम हो मेरे हमनवा हमराज? शायद इस बात का अंदाजा लगाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि तुम अक्सर गुम हो जाते हो मेरी तन्हाइयों को चीर कर। और इस खाली शब के इन अंधेरों में मैं ढूंढता हूं चांद को जो आज

उस ओर तक जहां तुम मुझे तन्हा छोड़ गए थे। गर्चे यह सफर आज भी मुझे मेरे हर उस बीते लम्हे को भुलाने का हौसला देता, मगर तुम्हारी मासूम बेबस अदाओं का एहसास कैसे भुला पाऊंगा, जबकि हमारे रिश्ते अब पिंजरों में कैद हैं। फिर भी उन रिश्तों की खुशबू हमारे दरमियान इन फासलों को कम करने में हमेशा मदद करते आ रहे हैं।

क्यों न लड़खड़ाएं। इन अंधेरों में मैं तुम्हें संभाल लूं। दूर तक चले हम साथ साथ, उम्मीदों के चिराग रोशन करें, ताकि एक नई सुनहरी सुबह हमें अपनी बाहों में समेट ले। भूल जाए बीते मौसम की यादों को, जब तुम तन्हा थी और मैं भटकता मुसाफिर। क्यों ना इस मौसम में याद करें ढलती शामों को, सुरमई उजालों को, रात की नरम मिजाजी को, तुम्हारी मासूम अदाओं को। इस सफर में फिर से साथ साथ लड़खड़ाएं।

जाने किसकी तलाश उनकी आंखों में थी, आरजू के मुसाफिर भटकते रहे। जितने भी वो चले उतने ही बिछ गए राह में फासले। ख्वाब मंजिल थे और मंजिलें ख्वाब थीं, रास्तों से निकलते रहे रास्ते, जाने किस वास्ते आरजू के मुसाफिर भटकते रहे।

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाओं में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे।

कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने दोस्त रमेश

सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा कि पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाह सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है कसूर अपना है।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण आप यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। हम अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम तैयार कर आप तक पहुंचाते हैं, और उन सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जो हमें अपना फीडबैक भेजते हैं, कार्यक्रमों के बारे में अपने सुझाव भेजते हैं। आप भी हमें सुझाव भेज सकते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं इस सामुदायिक रेडियो से जो अम्बाला से प्रसारण करता है, और इसकी स्वीकृति मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से मिली है। आज के लिए बस इतना ही। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा, और स्टूडियो में घड़ी की सुइयां बता रही है कि समय हो चुका है 9:01 और 32 सेकंड। दोस्तों, रेडियो वितस्ता FM 90.0 MHz पर आज के सफर को अब यही विश्राम देने का समय आ गया है। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त भारत सोपोरी, और आज का ये खूबसूरत दिन हमें सभी के लिए बेहद खास है। आज के विषय पर बात करेंगे, कुछ पंक्तियां आपको सुनाएंगे, कल के कार्यक्रमों का विवरण देते हैं, फिर लेंगे आपसे विदा। आज यानी 4 अगस्त 2026 का दिन धार्मिक, सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कई मायने रखता है। कुछ बिंदु और कुछ जानकारी आपके सामने साझा करना चाहता हूं। पहला, सावन का पहला मंगला गौरी व्रत यानी धार्मिक महत्व है इसका। आज पवित्र श्रावण मास का मंगलवार है, और इस दिन सावन का पहला मंगला गौरी व्रत रखा गया है। ये पावन दिन भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त करने का अवसर है। सुहागिन महिलाओं के लिए ये दिन अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि और परिवार में खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। माता पार्वती का ये व्रत हमें रिश्तों में समर्पण और प्रेम का संदेश देता है। दूसरा बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता और जश्न, इंटरनेशनल डेज जो है उनके बारे में आपको बता देता हूं। पहला, इंटरनेशनल ओवर अवेयरनेस डे। आज का दिन पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में उल्लुओं का योगदान और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए जाना जाता है। प्रकृति का हर जीव हमारे इस खूबसूरत धरती के संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। दूसरा, नेशनल चॉकलेट चिप कुकी डे। और हां, मिठास के शौकीनों के लिए आज चॉकलेट चिप कुकीज का आनंद लेने का भी एक मजेदार ऑन ऑफिशियल दिन है। दिन की शुरुआत चाहे कितनी भी ऊर्जावान रही हो, शाम ढलते ढलते ही रेडियो वितस्ता का ये सफर हमें सुकून और शांति के एहसास से भर देता है। जिस प्रकार जेलिम यानी वितस्ता की पावन धारा अविरल बहती है, उसी तरह हमारी संस्कृति, परंपरा और संगीत की ये धारा आपके जीवन में हमेशा बहती रहे। जाने से पहले आज के इस खूबसूरत दिन को विराम देते हुए रेडियो वितस्ता की ओर से जो पंक्तियां आपके लिए लाया हूं, हर दिन की तरह आज की पंक्तियां यूं है। सावन की इस पावन बेला में शिव गौरी का आशीष रहे। सावन की इस पावन बेला में शिव गौरी का आशीष रहे। वितस्ता की हर एक लहर में अपनों का विश्वास रहे। दिन बदला, तारीख बदली, पर दिल का ये रिश्ता खास रहे। दिन बदला, तारीख बदली, पर दिल का ये रिश्ता खास रहे। रेडियो वितस्ता FM 90 हमेशा आपके आसपास रहे। जी हां दोस्तों, रेडियो वितस्ता FM 90 हमेशा आपके आसपास रहे। देता हूं आज के हमारे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी जो हम आपके लिए कल पूरे दिन के लिए लाए हैं, और साथ में ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो ये सारी जानकारी आप तक पहुंची है, ये टीम रेडियो वितस्ता में अपना सहयोग देने वाली अनु है। ये उनकी ओर से ये कंपाइल किया गया है जो हमने आप तक पहुंचाया है। कल के कार्यक्रमों का विवरण जल्दी से, 5 अगस्त 2026 बुधवार को जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। 5:58 पर हमारी सभा की शुरुआत होगी वंदे मातरम से, और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार। पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं पंचांग के साथ। 6 बजे सुनेंगे आप भक्ति संगीत, और कल बुधवार है, कल आप सुनेंगे शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 3, और 8:30 सकारात्मक कहानियों का एपिसोड 5 माँ और
तुलसी होगा शीर्षक, पेश करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 बजे कार्यक्रम फिल्मी किस्से और आन मिलो सजना, हमने फिल्म कल के लिए चुनी है। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे दीपक कश्यप। और अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:05 पर, काव्य गोष्ठी एपिसोड 8। हमारे साथ होंगी इंदु शर्मा। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी। 2:00 बजे आप सुनेंगे पुनः प्रसारित कार्यक्रम 31 जुलाई 2026 का आपकी फरमाइश कार्यक्रम। ये इसका पुनः प्रसारण होगा, जरूर सुनिएगा, अपना फीडबैक भी हमें भेजिएगा। 6:00 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम में गजल और 7:00 बजे रेट्रो हिट्स एपिसोड 1। और पेश करेंगे आरजी किरणी। और 8:30 बजे हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है तुम्हारी पनाहों में। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मैं भारत सोपोरी अब आपसे लेता हूं आज्ञा। आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखें। कल फिर मुलाकात होगी रेडियो वितस्ता FM 90.0 MHz पर 6:00 बजे। और आप सुनिएगा पूरे दिन 6:00 बजे से 9:00 बजे तक नई उमंग, नई गीतों और नई बातों के साथ। कल तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।